0: एक नहीं दात आपस से जो पाइए नानक सा करमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पर कसम ना जाए नानक सेवकाडी जिससे ती खसम समाए पौड़ी नानक जा।

0: गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद ना। सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै। घर नौ निद्दा वैताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक चिहन यर बरन जात यर पात नहन जिहन रूप रंग यर रेख पेख को कहना सकत किहन अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत एक मन पुरख त्याए वरदाता संत सहार सदा विख्याता तास चरण ले हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा गावा गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावह प्रहलाद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियों कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यों काले आई कुत्ते मोहे खाज होआ मुरदार गुसाई राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत कौ खाई पाप बुरा पापी कौ प्यारा पाप लदे पापे पासारा पापी पाप कमाव दे कर दे हाए हाए नानक ज्यो मथन मदानिया त्यों मथे त्रम राए संता नल वैर कमाव दे दुष्टा नल मोह प्यार अगे पिछे सुख नहीं मार जमह वारो वार लिख कत है न छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेवियन अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसमदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤ

सुरत शब्द साखी मेरी संगी बाजा लोक सुने पत चोली मंगण कताई भीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे बंद रख चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन का धरती दीनी एत गुण विसरे सिद्ध साधक यार जोगी जंगम पीर पुरस बहुत रे जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोली मंगण कहताई भीखिया नाम

चागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे चागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे चागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे चागड़दंग।

0: तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापड करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत,

परोस आया कृपा आया। तुम करहो दया मेरे साई, तुम करहो दया मेरे साई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा।

नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखह शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जान्या हर राया। कहो

रहा बहुत जन्म बिछुरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधव यह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पर

0: ले पहले के लिखे टुंडे सराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरी अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतला लागी वार महला दूजा
1: जे सौ चंदा उग है सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला
0: नानक गुरु न जितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नाहा फलिए फुलिए बपुड़े
1: पीतन विच सुवाह पौड़िया।

0: ता मेघा खेता हा दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा हा अंडर जेरज उत्पजा खाणी सेत जा सो मिर जाने नानक आसरा मेरा जनता हा नानक जन तू पाए का संभाले सवना हा जन करता करना किया चिंता पे करणीता हा सो करता चिंता करे जन उपाया जग ते जो हारी स्वास्थ तेस तेस दीवाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला
1: लख निकियां चंगियां लख पुना परवान लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबान लख सूरतन संग्राम रान में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आया वल जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा।

दान महंडा तो लिखा जे मिले तो मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ियो एक मना लगते आई है, फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वह पूर्व लिखा था धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव।

चाहूं जोग गुर सेवा कर फल लही अंग बंधन जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कही अंग परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं सत गुर गुर सेव आला।

आनंद नित मंगल, गौर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गौर दर्शन, पारसन परम पवित्र।

एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहु, सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी

सच में आ छह सात रह सब कुछ सच समावे। ऋग कह रहे आ पर प्रभु राम नाम देवा महसूर। नाय लया पराचित जाए नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार।

नील वस्त्र ने कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार, पड़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत करनी सदा। तौ नानक मुख अंतर पाए, पौड़ी सतगुर विटों वारे।

0: तौ ब्राह्मण कौ करलाओ गो ब्रदर न जाई तोती टिका तै जप माली ताल मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़ेक ते बांस संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले आए जाय त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाच श्री बगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाथ ओना पे आवे हुई साध कूड़ी रास कूड़ा बापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आपर पूर मत्थे टिका तेर तो तीका खाई हचरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंकैपुर किसे ना जाना देखे चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ेयार मत पिटावे मत पिटा एहो अन असाडा फिटे तन

0: मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रू, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खा, नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाहे महला पहला।
1: सब सूतक परम है।